दूसरा बिहार नेशनल असेंबली वास्तविक नगर पालिका और प्रॉपर्टी जैसे उद्योग राष्ट्रीय स्थापना जितने किसी अध्यक्ष प्रॉपर्टी जैसे उद्योग आता विषाक्त चीज में समय को

0: साइन उत्तर करने जुन महिला में मत ट्रैक यूज कर सफा राख्छ अभी आपको आमा तब
1: तब तब

कि जो रास्ते यहाँ सिटी पर भी रास्ता नहीं हो, मैं ये फिल्म को बंद वाली चीज हूँ, इसलिए बंद करती हूँ। रेडियो को बनाया था, उन्होंने 10 मिनट 7 मिनट

सब्जी फल फूल सहित पोषण पूरक खानाले बच्चाहरू तन्दुरुस्त बनाए। पूरक खाना सँगसँग दुई वर्षसम्म स्तनपान जारी राखे।

0: पहिलो औषधि हो। जन्मेको एक घण्टा भित्र अनिवार्य स्तनपान सुरु गरौं। 6 महिनासम्म आमाको दुध मात्रै खुवाऊ। स्वस्थ बच्चा, उज्यालो भविष्य। स्तनपान गराउ, स्वास्थ्य बचाऊ।
1: रेडियो गुरुबाबा एफएम द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
2: मौसम ओ हावा पानीले अपने खेती बालीमा समस्या परलवा कलसे बरघरान अङ्गना सुनि समाधानको उपाय त थाहा हो जे याद कर दिना हरेक सोमबार सन्ध्या 8 बजे रेडियो गुरुबाबामा।
3: मोर समस्या त एकटा घसिम समाधान हो गेल। मजा कार्यक्रम बना।
0: ग्रहमा बन्लक पोषकर पूरक खाना 6 महिना पाछ अनिवार्य शुरू गरी अन्न गेडागुडी साग सब्जी फलफूल सहितका पोषकर पूरक खानाले बच्चा हना तन्दुरुस्त बनाए। पूरक खाना सँगसँग 2 महिनासम्म स्तनपान जारी गरी।
1: रेडियो गुरुबाबा एफएम द्वारा जनहितमा जारी।

चार प्राचीन सृजनशील आदिवासी समाज का कार्यक्रम को रेडियो बाबा एफएम को 18/7 शनिचरक 30 गते बिहार 7/8 कैलाक आर्थिक वर्ष का 2082 का पारिवारिक प्रतिवेदन तथा आर्थिक वर्ष आय 23 को ऐना वर्ष का नीति तथा कार्यक्रम अनुमानित बजेट प्रस्तुत करना रेडियो बाबा एफएम का स्टेशन मैनेजर पुष्पा चौधरी जानकारी दलवाजी सात अंशा पांच पड़ी नगर पालिका का नंबर 5 स्थित थारू सांस्कृतिक केंद्र को फोरम में संस्था ध्यान 11 बजे बांसपुरी नगर अस्पताल में आज प्रत्येक महीना नियमित रूप में विशेषज्ञ चिकित्सक सेवा दिए होगा। बांसपुरी नगर पालिका गोलपुर मेडिकल कॉलेज का सहकारी में बांसपुरी नगर अस्पताल में प्रत्येक महीना नियमित रूप में निर्मित रोग का विशेषज्ञ चिकित्सक का सेवा देना नगर अस्पताल का अनुसार महीना का पहला मंगलक हाथ जोड़ने तथा नशा रोग विशेषज्ञ दूसरा मंगलक फिजिशियन को तेसरा मंगलक मुंह तथा दांत रोग पर विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध की रहता उसे प्रत्येक महीना का पहला व्यवहारिक दांत रोग विशेषज्ञ दूसरा व्यवहारिक नाक कान तथा ख्यासा रोग विशेषज्ञ तेसरा व्यवहारिक स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ हो चौथा व्यवहारिक मानसिक तथा नशा रोग विशेषज्ञ सेवा देना नगर अस्पताल का अधिकृत तथा डॉक्टर मनोज कुमार सहजान के दरबार बांसुरी नगर पालिका क्षेत्र भेल नागरिक स्वास्थ्य सेवा में से वंचित ने पुलिस को सह सुलभ रूप में गोरखपुर का विशेषज्ञ सेवा बांसुरी का नगर अस्पताल में से सेवा पाई स्वागत करना उद्देश्य में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज सड़क सप्ताह में नियमित विशेषज्ञ सेवा शुरू की गलत महाप्रेट नगर अस्पताल में फरक फरक दिन निर्मित रोग का विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध पार्षद सामान्य स्वास्थ्य समस्या का लाभ समेत बाध्यता कम होना बांसुरी नगर अस्पताल चलेगा। नगर अस्पताल में सहूलियत में वीडियो एक्सरे सेवा के संचालन डॉक्टर शाह जानकारी बांसुरी नगर पालिका वडा नंबर 6 में आर्थिक वर्ष 2083-84 का लाख सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण करना होगा। वडा कार्यालय के अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण श्रावण 20 और 31 गते बिहान 7 बजे से कर्मधारक से संबंधित लाभ कार्यो कर समय मानक नवीकरण कराए दर्जी करेगा। श्रावण 20 गते शनिचरक बिहान 7 बजे से सतहिया अमेरिया पुरान बस्ती तनोली सागरपुर टोल 3 नंबर टोल टीसीएन को रिहार टोल को लाभ कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा भत्ता में वितरण करेगा। उसे कल श्रावण 31 गते द्वारा बिहार 7 बजे से दानपुर दमोली 10 नंबर टोल चौतारा टोल सोल्टी टोल नारायणपुर मोतीपुर बनपुरिया और करोड़ प्रगति नगर टोल का लाभ कार्यक्रम अधिकरण भेजना वाक्य लाल बहादुर क्षेत्री जानकारी वाक्य संबंधित सबको लाभ कार्यक्रम प्रकरण मिति को समय में अपन आवश्यकता जांच सहित पूरा कार्य में उपस्थित होकर सामाजिक सुरक्षा भत्ता अधिकरण कराए अर्जी करे। बांसुरी बजार का अत्याधिक भीड़भाड़ बिना किसान चौक क्षेत्र में अटो पार्किंग का कारण दुर्घटना जोखिम पड़ना संग आवत चालक में सहित समस्या बांसुरी नगर पालिका वडा नंबर 5 पार्किंग निषेध करवा अटो पार्किंग निषेध करवा समस्या कुछ कम होना देख पड़ सके दीर्घकालीन व्यवस्थापन प्रसिद्ध करना का विषय में महत्वपूर्ण पड़ा। ऑटो पार्किंग का व्यवस्थापन तथा बजार क्षेत्र में व्यवस्थित बने योजना के विषय में हमारा बांसुरी नगर पालिका वार्ड नंबर 5 को वार्ड अध्यक्ष से बात करते हुए